0: नमस्कार, प्रणाम, सत श्रीकाल, आदाब, जय श्री सीताराम। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 FM पर भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5vvi.com.au पर, मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। समय हो रहा है 3:30 और बार है रविवार। बाहर मौसम भी ठंड की हल्की हल्की आहट देखने को मिल रही है, तो शायद आप आज रविवार के चक्कर में घरों में होंगे और अपने भारतीय व्यंजनों से अपने बच्चों को और अपने आप को आनंदित कर रहे होंगे। श्रोताओं, कुछ दिनों से हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री श्री एंथोनी अल्बनीज़ जी के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई मधुर संबंधों की मधुरता देखने को मिल रही है। 9 तारीख शाम को मार्वल स्टेडियम मेलबर्न में लगभग 30,000 से ऊपर प्रवासी भारतीय इन दोनों प्रधानमंत्रियों की बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए और रूबरू हुए।
1: Economic future that Victoria and India are building together.
2: Well, thank you so much, Jacinta. And I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respect to elders, past, present, and emerging. Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvelous Melbourne.
3: अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बलंग बजा के इनको सम्मानित कीजिए, इनके सम्मान में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडलेट को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au। श्रोताओं, कल रात भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला समाप्त हो गई, जिसको इंग्लैंड ने 5-0 से भारत पर जीत हासिल की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 एफएम भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्क के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर।